0: शुभ समय बगल में ही सुंदर बना गए में सोबल होने के लिए बहुत गया दे मोदा नोनो अलवात दला से जेबे ते में सोबलाना ले दे उन बुबगर उन दिन दिमा ना बोले दा के जला दिन दिमी एक बार हसेर देना गने के देखे कुछ ने नांसंग उंगल ही उन बितोजो वे दे वो तबांग खोलूदा गिते दा सोगरे खोलूदा गिते दा अतोपामा खोलूदा गिते दा नि जीवी खोलूदा अगिते दा दिन दिमी नालें दे बार हसेर देना गने के देखे को नेले निलुरुंग उंगल नीतोजो वे दे वो करो खोलूदा गिते दा Tom Donne, Miss Wayjon, ne donna pas la fille de Mary, ni Soria, Madame Lenon, Posse.
1: Si je suis malade, comment ça se passe?
2: Vous vous présentez dans un centre de santé conventionné, muni de votre carte d'assurance et vos carnets de soins. Le soignant vérifie les documents et vous soigne. L'assuré paye sa part, représentant environ 20% de la facture. En cas d'ordonnance ou de bilan, l'assuré se rend à la pharmacie ou tout autre établissement conventionné nécessaire à sa santé. Mais ce n'est pas tout. Votre famille est également couverte par l'AMU. Les conjoints et vos enfants à charge de moins de 21 ans dans la limite de 4 enfants et jusqu'à 26 ans pour les enfants non mariés, étudiants ou en apprentissage. Les enfants en situation de handicap sont couverts sans limite d'âge.
1: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
2: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle, Sécu.